0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
3: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
4: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ

0: वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका

उन्हें ठगा सा बिल्ला लव ब्रेक्स अप जिंदगी फिल्म की गीत लगाते हैं हमें खाला प्रोग्राम डुएट्स एंड कॉरस हिंदी फिल्म गीत प्रोग्राम शेष कर दिया हम बोले से तो अपना खान सबके जाना दिया से इतने पर अलग पसते समय 10:20 हो डेलीवर रिले कर दिया वर्ल्ड न्यूज इंग्रजीत खबर शुनब और आम खान आको लग कर 11:30 मैं लई कि आई बोले से लाइव फोन इन হিন্দী ফিল্মি গীত প্রোগ্রাম এই সময়তে আমি খান সব আকো লগ করা হব শুনে থাকা সববিলাক আজি ফুজির যান বি আইকেনা এস এম এস দ্বারা আইকেনা প্রোগ্রামতে সামিল হয়েছে আপনার খান সব উপরতে খুশি জানাই দিয়েছে।

0: बादे इरादे। बादे इरादे।
1: भगवान सिंह जी शायद ये मेरे पास नहीं हो सकता है, मैं पूरा विश्वास है। अगर आपको और दूसरा गीत सुनना है तो बता दीजिए।
0: जी जी, फिर आई मिलन की रात का।
1: आई मिलन की रात। आई मिलन की रात में कौन सा गीत सुनना है?
0: तो सावन का महीना आया है।
1: सावन का महीना आया है। ओके, आई मिलन की रात। देखता हूँ।
0: और ये नहीं मिले दीदी तो आप है ना इतिहास फिल्म का सुना दीजिएगा, चोरी चोरी।
1: इतिहास
0: जी।
1: ओके, इतिहास में चोरी चोरी देखता हूँ। चोरी चोरी अलका याग्निक और कुमार सानू का आवाज में। ओके ठीक है। और किसी का नाम लेना पसंद करेंगे आप?
0: दीदी पहले तो आपको रहेगा।
1: ओके ओके, थैंक
0: यू। बाद गजराज लोधी जी हैं, शिवा लोहट जी, तनुश्री बिटिया है, अनिल भस्मतारी, रमेश पात्रे जी, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, आशुतोष जी, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसर सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा, मांगीलाल चंदेल जी, भाई कन मुंडा जी, गंगाधर सावनका जी, और आप सभी को डेलीकेट रहे जो लाइव सुन रहे हैं दीदी।
1: ओके ठीक है। भगवान सिंह जी आपने जो मांग किया है दो मैं नहीं खोज पाया, फिर भी इतिहास
0: कोई बात
1: मिला
0: नहीं,
1: है।
0: दीदी मेरे पास तो है ना करीबन 500 फिल्में लिखी रखी है, अगर आप ये चिंता मत करा करो कि नहीं मिला, हम किसी भी फिल्म का नाम बता सकते।
1: ओके ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। तो आप सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए दिल से शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: ओके वेलकम। उन्हीं टका सब प्रोग्राम सबसे पहला कॉल करना मांग करिसे मध्य प्रदेश पर भगवान सिंह परमार, और तार पर पसंद करिसे इतिहास फिल्म की गीत गाय से अलका याग्निक और कुमार सानू, और तार एफएम ट्रैक पर आई किना जुरी किना तार किस साथी बिलक बनाए रखी गिना से तार खान के डेडिकेट करी दी गिना से, किंतु आम खान सब एक साथ मिली गिना हुरीबो और एन्जॉय करा हुबो इतिहास फिल्म की गीत।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते। हाँ
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागडो, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ।
1: जी तो मैं गाने के

0: बोल बताऊं आपको? जी,
1: हाँ जी जरूर बता दीजिए।
0: रिमझिम के गीत सावन गाए।
1: और फिल्म का नाम बता देंगे?
0: फिल्म का नाम मुझे याद नहीं दीजिए इसका।
1: फिल्म का नाम बता नहीं है तो पता नहीं है तो मैं कैसे खोजेगा।
0: गाने से सर्च करिए ना आप,
1: रिमझिम
0: अगर
1: क्या
0: आ
1: बोला
0: जाता है।
1: था
0: रिमझिम के गीत सावन गाए।
1: कि गीत देखता हूँ, क्योंकि बोल मिलजुल वाला बहुत होता है ना, इसलिए तकलीफ होता है।
0: जी
1: शायद
0: देखिए, अगर मिल जाए।
1: ये नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: तो फिर आप ये सुनवा दीजिएगा, सावन को आने दो, ये
1: सावन,
0: फिल्म का नाम है।
1: ओके सावन को आने दो, देखता हूँ।
0: जी
1: ओके
0: देखिए
1: सावन को आने दो, ओके
0: जी। और
1: सावन को आने दो में कौन सा गीत सुनना है आपको?
0: ये तुम्हें गीतों में डालूंगा,
1: एक बार फिर से बता दीजिए।
0: तुम्हें गीतों में डालूंगा, सावन को आने दो, ऐसा करके गाना है उसमें।
1: ओके
0: मिल जाएगा।
1: ये फिल्म का
0: हाँ
1: सावन को आने दो यही होगा ना क्या?
0: हाँ यही है
1: जसपाल सिंह
0: जी।
1: और कल्याणी मित्र का आवाज में,
0: हाँ
1: ठीक है?
0: जी,
1: ओके और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
0: हाँ डेडिकेट आपको रहेगा ये गाना सबसे पहले
1: ओके थैंक यू।
0: जी। और हे भगवान सिंह परमार, आशुतोष अमीना संगीता जी, और कानपुर से पूनम जी, आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी, और नॉर्थ ईस्ट के दीपाली जी।
1: ओके
0: हाँ जी, और तनुश्री है महाराष्ट्र से। हाँ,
1: ओके और
0: और भगवान सिंह परमार तो हो गए, केसरी सिंह राजपूत है, रमेश टेलर है भोपाल से, सुनील झा है, ये सभी लोग कार्यक्रम सुन भी रहे हैं। अभी
1: जी
0: भगवान सिंह
1: बिल्कुल।
0: का पहला कॉल आया था, हमने सुना उनको। हाँ जी
1: ओके हो गया, इतना ही लेना है आपको?
0: हाँ जी, और कार्यक्रम मोबाइल ऐप से मैं सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है आपकी।
1: ओके ठीक है प्रेम सिंह
0: और
1: जी,
0: एक बात और है, ये दीदी मैं आपको बताऊं कि
1: जी
0: जैसे ही
1: बोले।
0: हमारा कॉल लगता है ना आकाशवाणी कोहिमा पर जी, तो बराबर से रिसीव करते हैं, ऐसे रिंग खाली नहीं जाती
1: जी बिल्कुल, यहाँ पे तो हम लोग तो वेट करता है कौन कॉल करेगा, वो तो रिसीव करना ही पड़ता है, यही है मेरे काम
0: जी। हाँ,
1: तो।
0: जैसे कुछ आकाशवाणी पे होना लगाते हैं ना हम कॉल, तो बहुत सारी रिंग खाली जाती है, लेकिन कॉल बहुत कम लोग उठाते हैं, लेकिन जैसे आकाशवाणी कोहिमा पे कनेक्ट होता है ना कॉल, सीधा कॉल उठा लेते हैं आप।
1: वो तो बहुत अच्छी बात है। ओके प्रेम सिंह जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल के लिए शुक्रिया।
0: जी थैंक यू सो मच।
1: होने टा सब बिल्ला प्रोग्राम टे एक बार दूसरा गीत करने कॉल करी से उज्जैन प्र प्रेम सिंह सिसोदिया और तार प्र पसंद करी से सावन को आने दो फिल्म की गीत गाए से जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और खरस लगा वास्ते और तार प्र इटू गीत टू एफ एम ट्रैगपन लतार लगा किसुमान साथी बिल्ला जुन टुखन एफ एम ट्रैगपन को हिमालत जुरी की ना थकी आसे तार खान के डेडिकेट कुरी दी की ना से तो हुनी बो सावन को आने दो फिल्म की गीत।

0: हेलो,
1: हेलो
0: यस,
1: दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन को ऐसे
1: डिस्ट्रिक्ट चला दे सुनारिया सांपुरा भाईकन मुंडा को ऐसे
0: भाईकन कोबी किनी गा ऐसे आज कल
1: ऐसे तो मैं एकदम भालो से एकदम और कॉल लगी से बेसी खुशी पाए से
0: हाँ
1: और कते मौसम भी आज एकदम ठंडा ठंडा आसे
0: ओके ओके बेसी भाल खबर
1: धूप भी ना बारिश भी ना एकदम वेरी ऐसे
0: हाँ बेसी भाल खबर
1: मजा आसे यार। हाँ
0: कोबी आज की गाना हुनी बोले मनो इना कॉल करी से
1: आप मुझे अच्छे लगने लगे। हाँ
0: फिल्म लगा नाम से तो ओके
1: हाँ हाँ आप मुझे अच्छे लगने लगे लिखा से।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे सबक आसना नाई ओके बाइकन मुंडा इतु गीत तो नाई नकी नाई जदि आपनार अल्लाह को हुनी बोले पसंद करिले कोई दिबी
1: बाहर आने तक
0: बाहर आने तक ओके
1: ये तो आगते में होली से या तरफ बाहर
0: आसे कौन तो गीत हुनी बोले पसंद करे आसे
1: ये मोहब्बत इनायत करम देखते हैं इनका एक टाइटल
0: ओके
1: लगी थे
0: ओके ओके ठीक आसे आरो कोनो बाला नाम
1: दीदी। ये गाना किरा था किसे अपने अपने लगा बैंकी बैंकते ये तो मूवी लगा।
0: आखे आखे दिल के
1: हाय
0: करीब दिन एक पल हंसना
1: हाय
0: कब से खादी हूँ
1: हाय
0: काली तेरी छोटी छोटी ते इतु आसे
1: हाय काली तेरी चोटी ये भी भारत से हाले भी इतिया मोहब्बत इनायत करम देखते हैं ये तो क्या प्ले करी भी।
0: ओके कोनो वाला नाम लो बोले पसंद करे आसे
1: हाँ हाय एफएम टेक अपन लग रहा है एक लिस्टनर्स ताकि देता हो इतिया अमल बसुमतारी विमल बसुमतारी रमेश पात्र रोनू पात्र लाकी जुगेंद्र रोंगपी शिकारी रोंगफार शुभाके जमीर तरासर बसुमतारी अंजलि बसुमतारी स्मिता बसुमतारी चंद्र टिमुंग हेन्दिका टिमंगपी जुमन उमन पूनम बेपी आर देवाशीष हजारिका आर हेल्ला फरमाइ एक ग्रुप रा भी आजिकाली जुड़ थे तैखान भी नाम कब लगे जो आसे भगवान सिंह परमार जी गौतम राय बोले जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी आर रमेश प्रजापति जी आर गंगाधर सावनकर जी आर जिमान जनते होनी थे सबके आर आरजे तमजन सर आरजे जेकर सर आरजे वेरोनिका मैम आर अपनी के भी डेडिकेट कर दी से।

0: हेलो,
1: जय माता जी।
0: जय माता दी। बोले, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंतमल बगला
0: ओके, बोले, आज कौन सा गीत सुनना है?
1: जी। मैडम आज फिल्म का नाम रहेगा 2 अक्टूबर,
0: हाँ?
1: 2 अक्टूबर,
0: 2 क्या बोला?
1: 2 अक्टूबर आती है ना, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर आती है ना।
0: पूरन वर्मा जी, शायद मेरे पास वो नहीं है ना? क्या नहीं है?
1: फिल्म का नाम रहेगा घरवाली और बारवाली।
0: घर वाली भार वाली तो है, कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: आप बताइए मैडम।
0: हाँ, एक तरफ है तारा तारा है, लव कर ले रब जाने
1: लव कर
0: भाई।
1: ले,
0: ओके
1: लव लव कर ले। सबसे
0: ओके, ठीक है। और नाम लेना है तो बता दीजिए।
1: पहले आप हैं,
0: ओके,
1: मेरा दोस्त है, राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, संगीता जी है, आशुदो देवनाथ है, विमल है, अमल है, शिवा लोहा है, और जितने भी कॉलर लाइव कॉलर आपके साथ बातचीत कर चुके हैं और आगे करने वाले हैं उनके लिए,
0: ठीक है। पूरन
1: और रमेश
0: वर्मा,
1: पात्रे जी भी है मैडम।
0: ओके, ठीक है, ठीक है। पूरन वर्मा जी, आपका गीत सुनिए और एन्जॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए थैंक यू।
1: थैंक यू मैडम।
0: होने लगा सब बिला खुनी बो। घर वाली भर वाली फिल्म की गीत गाय से उदित नारायण और पूर्णिमा और साथ गाय से अनु मलिक और इच गीत होने बोले मन हुई ना कॉल आई से जयपुर राजस्थान पर पुरान वर्मा और तार पर FM ट्रैक बनला किसुमान साथी बिलाक और शुनी थका বেলাক আৰু যিমান জন বি এতিয়ালৈকে কল কৰিছে আৰু কল কৰিবলৈ আছে আপোনাৰ খান চব কেবি জোৰাই দি কিনা ডেডিকেট কৰি দি কিনা আছে, তো শুনিবি আৰু এনজয় কৰিবি।

उन्हें ठगा सब बिल्ला के तीसरा बार स्वागत करे से आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 106 मेगाहर्ट्ज़ पर और इटा समय ते सबसे पहला ते अपना खन हुनी ठकी से शेखर रावजियानी लगा आवाज से टैक्सी नंबर 9211 फ्लेम मोड प्रोग्राम ते एक बार दूसरा गीत होने वो शिखर फिल्म के गीत गाए से सोनिधि चौहान।

एथ्रास फ्लिमत अपनालोके आदनन सामी आरो सुनिधि चौहान लगा वास्ते उनिले प्रोग्राम टे एबार दूसरा गीत हुनिबो दिल तो बच्चा है जी फिल्म की गीत गयसे कुनाल गांजावाला।

0: आकाशवाणी
1: आपकी वाणी आकाशवाणी प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपकी फरमाइशी गीतों का सफर अब शुरू होगा। मैं हूँ बबिता रावत आपके साथ। और जब आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट की बात आती है तो एक से बढ़कर एक गीत आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। तो अगर चाहते हैं आपकी आज आपकी प्ले लिस्ट यानी कि प्ले रिक्वेस्ट पूरी हो तो आपने इस रिक्वेस्ट को भेज दीजिए 9868107070 पर। हम कोशिश करेंगे आपकी इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए। हाँ जी, हम गाएंगे नहीं, गाएगा कोई और। जी हाँ, जिनका सॉन्ग है, हाँ बहुत सारे सिंगर्स हैं, सोनू निगम, आशा भोसले, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे लिस्ट है आपकी फेवरेट सिंगर्स की भी और यहाँ पर गानों की भी। आप भेजिए 9868107070 पर अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट, हम करेंगे पूरी आपकी ये सॉन्ग रिक्वेस्ट। अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए है।

अगली रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है कविता की पसंद का गाना, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपकी पसंद का गाना भी प्ले हो सकता है। 9868107070 पर अपनी पसंद का गीत हम तक भेजिए। और कविता उत्तराखंड से है और इनकी पसंद का ये गाना हम सुना रहे हैं।

अरे हम है ना आपके पास, क्यों इतने उदास होते हैं? इतने उदास वाले गाने कहीं ना कहीं मन को दुखाते तो है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बोल ही तो बहुत प्यारी है और ये बोलियां ही हमें बहुत प्यारी लगती हैं और हमारे दिल को एक सुकून दे जाती हैं। तो अगला जो गाना है वो मौसम के बिल्कुल अनुकूल है। जी हाँ, कूल कूल जूबी डूबी थ्री इडियट्स और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश की रिक्वेस्ट पर ये गाना आप सभी लोगों के लिए।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी रेनबो का साथ है, मैं और आप भी साथ हैं और प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, जहां आपका और हमारा साथ है और आप भेज रहे हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 9868107070 पर। मैं हूं बबीता रावत और आप इस नंबर पर अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए और हम यहां पर उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगला जो फरमाइशी गाना है वो किसने फरमाइश किया है, चलिए सुनाते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, अभिनेत्री संगीता बिजलानी जी के जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस गाने की फरमाइश करते हैं।

हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, और एक से बढ़कर एक गीतों का साथ आपका बना रहेगा। इस गाने से कुछ याद आया? बचपन के दिन याद आ गए। इतना प्यारा सा गाना है मासूम फिल्म का। और किसकी रिक्वेस्ट है ये? और शिवी और मुनमुन डली, आप सबसे नए फैंस, बिल्कुल आप हमारे बहुत अच्छे फैंस।

और भाई हमें भी सरपट सरपट दौड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्ट आ रही है। और अगली रिक्वेस्ट हम गुड्डू ताकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले बड़ावन गांव से ये गाना दिल तो है पागल। जी नहीं, दिल तो है पागल नहीं, दिल तो पागल है का गाना है ये। और इनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और मैसेज आया है सौरभ अरनेजा जी का गाजियाबाद से, और इन्होंने कहा दोस्त मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं है, आप बस शो एंजॉय करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हमारा बहुत सारे लिसनर्स हमसे जुड़े हुए हैं, हितेंद्र दास, मनस दास, वर्षा दास, शिफाली, जयता, पूर्णिमा, सुधांशु, गीतांजलि, सुमन और सनबिल कुंडलिया साम से ये हमें सुन रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं।

0: कम बोलते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सुनाएंगे आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आधे घंटे के लगभग समय खत्म हो चला है इस प्रोग्राम का लगभग, है ना। और ऐसे में आधे घंटे में हम आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी करने की सोच रहे हैं, और कौन कौन अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं और सुनने की कोशिश मतलब चाहते हैं, भाई सुनते रहिए है हमें। अभी जो गाना हमने आपको सुनाया है, ये सुना रहे हैं, सुनवा रहे हैं, सुना नहीं रहे, सुना रहे, सुनवा रहे हैं, ये भेजा है किसने? प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, जनकपुरी न्यू दिल्ली से इन्होंने भेजा है हमें रिक्वेस्ट। और बिल्कुल आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर।

मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट कब पूरी होगी, और यहाँ पर अगली रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है अमरदीप कुमार कुप्पमपट्टी चलकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से। जी हाँ, शुभ दोपहरिया बबीता जी, आपको भी बहुत शुभ दोपहरिया हो। और यहाँ पर तो बरसात की झड़ी लगी हुई है और आसमान में सूरज ने आज दर्शन दिए नहीं, खाली इस उजाले को हम देख रहे हैं और बरसात की बूंदों को। अभी फिलहाल ये गाना आपकी पसंद का।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं।

0: बातें कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

भाई बरसात हो रही है तो बरसात के गाने तो जरूर से फरमाइश में होंगे, और लिखा है आज सुंदर सुंदर गानों की लिस्ट होने वाली है और शो को बहुत सुना जाता है तो उनकी भी सॉन्ग रिक्वेस्ट आज कुछ खास है और बारिश के मौसम पर बनी हुई है। तनुज रमन वाष्णेय, प्रवल रमन वाष्णेय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से रिक्वेस्ट भेजते हैं अंदाज फिल्म के इस गाने की।

चेतन कुमार मनपुर बाजार गया बिहार से रिक्वेस्ट करते हैं बजरंगी भाईजान की इस गाने की। इसके साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहित

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपके लिए। और बहुत सारी बातें यहाँ पर रह जाती हैं अधूरी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ हमारी जो बात हो वो पूरी हो जाए। और हम चाहते हैं कि हर किसी की सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी हो, लेकिन क्या करें, समय का तकाजा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम पूरी करें उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो भिलौली जिला कासगंज से सतेंद्र सिंह जी ने रिक्वेस्ट की है कि दिलवाले, जी हाँ, पुरानी दिलवाले वाले का कोई गीत पेश कर दीजिए। जी हाँ, लीजिए आपकी नज़र में ये गाना और सुनिए, एंजॉय कीजिए।

रवि मेरठ से लिखते हैं कि कोई भी सॉन्ग बरसात का प्ले कर दीजिए, सुनवा दीजिए। तो बहुत सारे गाने अभी हमने बरसात पर सुने और बरसात वाले गाने की रिक्वेस्ट आई वो हमने पूरी की। तो चलिए अब आपका भी नाम ले लिया जाए, रवि मेरठ से इन्होंने हमें मैसेज किया है।

और इसी के साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ पर हम एंड करते हैं, लेकिन एक आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर पूरी करके जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरे बाद जो प्रोग्राम आने वाला है उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ। आशियाना में आज अक्षय भट्ट सेगमेंट में आपके साथ शाहिद होंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे, और उसके बाद रेडियो डॉक्टर 3 बजे होगा, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी पर बात होगी। दीपक शर्मा होम्योपैथ, डॉक्टर दीपक शर्मा होम्योपैथ से हैं और ये आपके साथ एक्सपर्ट होंगे, जुड़ेंगे, और आपकी जो भी समस्या है या कोई भी सवाल है, कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप बिल्कुल इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद संदेश टू सोल्जर में श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट SSP होंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट, और शाहिद होंगे 4 बजे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर में। और सिटी लाइट्स में संतोष राव होंगे आपके साथ प्रोग्राम, बहुत सारी बातें, सिटी की हलचल सारी बातें आपके लिए होंगी यहाँ पर। अब जो आखिरी रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं ये है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और ये सारी नाम एक ही मैसेज में आए हुए हैं, उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट अब प्ले करने जा रहे हैं हम। सुनिए, एंजॉय कीजिए, और मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मुलाकात होगी, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।

दो बजे के मुख्य समाचार एफएम रेनबो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद संयुक्त बयान जारी किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाई सीज फिशरी रिसोर्सेज खुले समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली के काम की समीक्षा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु जैसे शहरों से आने वाले कई भारतीयों के लिए इंडोनेशिया की सड़कों पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात वहां की शांति है। लगातार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारतीय पिकल बॉल संघ ने 2026 पिकल बॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये थे अभी के मुख्य समाचार।

102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना आपके साथ। मैं लेकर के हाजिर हूं, मेरा नाम है शाहिद।

और बात आज के आशियाने में सीनियर सिटीजन के बारे में, उनकी वेलबींग, हेल्थ और वृद्धावस्था में उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में, और साथ ही समाधान भी बताएंगे आज।

हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग एक प्रेशियस और मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होते हैं। समाज में, परिवार में वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी होते हैं। ये हमारे समाज की कीमती धरोहर हैं। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बुजुर्गों की बेटर हेल्थ और वेलबीइंग के लिए हमें सतर्क रहना होता है। किसी भी छोटी मोटी तकलीफ या चोट को इग्नोर करना या लाइटली लेना आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण ना बन जाए, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। कई बार बुजुर्ग अपनी कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम छुपा लेते हैं या बताने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में आगे बढ़कर आप खुद नोटिस करें या उनसे पूछें और एक बात पर और भी गौर करें कि कहीं अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर या बीमार तो नहीं कर रहा। क्योंकि बुढ़ापे की कॉमन एलिमेंट्स के सिवाय अकेलापन खुद एक बहुत बड़ी समस्या और बीमारी है। देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना आप सुन रहे हैं। आज सीनियर सिटीजन के बारे में मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद।

बुजुर्गों के लिए उनके आत्मसम्मान, उनकी केयर के अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी की केयर भी बहुत जरूरी होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा के तौर पर पेंशन स्कीम्स बहुत अहम होती हैं। इसके अलावा सेविंग प्लान्स और बुढ़ापे में स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट भी बहुत काम आते हैं बुजुर्गों के। साथ ही बुजुर्गों के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी बहुत जरूरी हैं, जो उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बेहद हेल्पफुल भी साबित होते हैं। दूसरों पर डिपेंडेंसी बचने के साथ साथ रिस्पेक्टफुल डिग्निटी मेंटेन भी रहती है। और सबसे जरूरी बात, डिजिटल या ऑनलाइन फ्रॉड्स जो अक्सर सीनियर सिटीजन को ही टारगेट किए जाते हैं, उससे भी उनको सुरक्षा मिलती है। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखने के लिए और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये सारे फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बुढ़ापे में हमारे बुजुर्गों के लिए। वन टू पॉइंट सिक्स देश नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशाना शाहिद के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आज हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, उनकी वेलबींग और फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी के अलावा सोशल और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है। उम्र कोई भी हो, तन्हाई, अकेलापन, लोनलीनेस एक भयानक खामोश बीमारी है जो इंसान को पूरी तरह से तोड़ देती है। बुढ़ापे में अगर इंसान अकेला पड़ जाए या महसूस करने लगे तो ये इनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में परिवार के हर सदस्य का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि बुजुर्गों के बीच उनके साथ गुजारे हुए पल वो लम्हे, हंसी और खुशियों की वो गूंज पीढ़ियों के साथ सदियों तक याद रहने वाली और साथ रह जाने वाली महकती खूबसूरत खुशनुमा यादें हैं। तो इन यादों को ऐसे ही संजोए रखें। शायद खुद यहां से विदा, आगे होगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम और 3 बजे रेडियो डॉक्टर में आपसे मिलेंगे। आप बने रहें FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश

0: ईस्ट चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेला। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ।
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: मैं कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को

0: वो की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
1: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
2: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
1: जी पिताजी।
2: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
1: अच्छा पिताजी।
2: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
2: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
0: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
1: और क्या,
0: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
0: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
2: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
2: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
0: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
1: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है। वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
1: हाँ।
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
4: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बात है, और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
0: लगता है नहीं जीतेगा।
2: वो वो पहुंच गया, जीता जीता, धन्य हो धन्य हो।
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर

गांवों और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र?
1: मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
3: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
3: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
4: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
5: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
4: हाँ, चलो चलो।
5: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा
1: है। वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
5: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
4: चलो चलो।
5: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: अरे ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
5: हमने पकड़ा है ये।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
4: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
4: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
4: अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
4: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
4: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

Well, my dear listeners, the next message comes in from our precious Durgesh Naginpure and family from Gram Jaswadi. Good evening, RJ Namaskar, Watermelon Sugar Artist Harry Style. Well, Durgesh ji, aapka bahut bahut swagat hai ek baar fir hamare is प्यारे से SMS रिक्वेस्ट प्रोग्राम में. और यस, जैसे ही आपके परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं उसी वक्त हमारी जो खुशी होती है बहुत बहुत होता है यहाँ पे. और यस, यहाँ पे आपका सॉन्ग प्ले करने के लिए तैयार है. वेल, बिफोर दैट आई ऑल्सो हैव अनदर मैसेज. इट राइट्स, गुड आफ्टरनून स्वीट आरजेवी, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग मिस यू फाइनली बाय ट्रेडमार्क एंड डेडिकेटेड. Dedicate this to Rockaville Metha, Kivileko Metha, Anjali Basumatri, Punam Baby, Purnima, Rose Sangtam, Bimal Basumatri, Apurba Pathor, Amal Basumatri, Jogindra Rongpi, Vili from Zunhiboto, Asevi, Christy, Vike Sonyo, Whitney from Vipoma, Salila, Dr. Zuben, Chopi Brothers, Chubake Jamir, Salitu from Mallory, Mandira Ramona from Goa, and for Tia, RJ Lydia, RJ Naro, and especially to Sunita Basumatri, RJ Veronica, and RJ Kenny from Akuzo. Well, Akuzo, thank you so much for that long list of dedication. Anyways, Akuzo, thank you so much. I hope you have a wonderful evening ahead of yourselves. Well, Durgesh ji and Akuzo, here is your track. And as Akuzo has mentioned so many names, I hope you guys are tuned in.

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: 이투 아카시바니 코히마 हमय 4 बजे फालके कोहिमा टाउन नगर ट्राफिक अपडेट एफएम ट्रकोपन पुरानिका अनिडीएसए मोनखोला पुरा लुइकिना पीएचक्यू जंक्शन इटिया नॉर्थ बाउंड ते मॉडरेट ट्राफिक दिखायसे आरो साउथ बाउंड होले हल्का ट्राफिक असे जुदि दुसरा रास्ता

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: हमारे चार बजे वालों के कोहिमा टाउन नगर ट्रैफिक अपडेट इनका निर्देश से मोनकुलापरा लोई किना पीएचक्यू जंक्शन इतिया नॉर्थ साउथ द्विता टेबी हल्का ट्रैफिक दिखाया से पीएचक्यू जंक्शन टू मेजर जंक्शन इतिया नॉर्थ बाउंडे हल्का ट्रैफिक असे किंतु साउथ बाउंड होले भारी ट्रैफिक असे दूसरा रास्ता होले लेडी स्माइल रोड टीसीपी पर लोई किना राजू पॉइंट इतिया नॉर्थ बाउंडे मॉडरेट ट्रैफिक असे साउथ बाउंड होले हल्का ट्रैफिक असे राजू पॉइंट प्रालोकिना सेंसस पॉइंट इतिया कने नॉर्थ बाउंडे मॉडरेट ट्रैफिक असे आकु साउथ बाउंड हुले हेवी ट्रैफिक दिखाई दिए से दूसरा रास्ता हुले सेंसस पॉइंट प्रा एनएचएके हाई स्कूल जंक्शन प्रालोकिना सेंसस पॉइंट इतिया नॉर्थ बाउंडे हल्का ट्रैफिक असे किंतु साउथ बाउंड हुले मॉडरेट ट्रैफिक असे

Well, ये तो फर्स्ट मैसेज मैं पिकअप कर लो से तो मैंने फर्स्ट मैसेज इतने बजे दिया लिया से और इतने लिखी कि ना पता है से चंद्र तिमुंग सारे ही जानकार भी अनलोंग पर आता है लिखी ऐसे गुड इवनिंग आजे बेमिसाल मूवी पर कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है इतु गाना तो बजाय दी बिना कोई ना लिखी ऐसे वेल थैंक यू सो मच चंद्र तिमुंग लिखी कि ना पता है दिया करने तो अपनी मांगिया गाना रीतिया बजाय दी वो শুনি কিনে এনজয় কৰিবি ৱেল লিচনাৰ্ছ খান এতিয়া শুনিব লতা মংগেশকৰ কিশোৰ কুমাৰ আৰু সুৰেশ ৱাটকাৰ লাকা ৱাষ্টে ফিল্ম আছে বে মিছাল

आपको हनी वो अपने लोग के कुमार शानू लगा वास्ते फिल्म से बरसात और एक गीत करने लिखी ने बताया से लक्की पट्रो गोलाघाट असम पर लिखी ने बताया से आता एक गाना डेडिकेट कर दिया से तालाका पेरेंट्स रमेश पट्रो रुनु पट्रो और साथी गाना से बैकुन मुंडा अमल बसुमतरी बिमल बसुमतरी देवाशीष हजरिका जोगेंद्र रोंगपी सोनाली एंग टीपी अंजलि बसुमतरी सुनीता बसुमतरी हंड्रिका तिमोंगपी प्रेमिका तेवा एंड ऑल फ्रेंड्स को लिखिया से वेल थैंक यू सो मच लिखी पठाई दिया करने वेल लिसनर्स खान यू गीत शुनी इन्जॉय करी सब मानवी

dia Gram Bachaura Tehsil Nagda Zila Ujjain se film ka naam hai Dabang ko inhone likha se well Prem Singh Sisodia ji aur Sathi log jo aap logon ne leke bheja hai Dabang film ka lekin गीत का बोल तो कुछ भी नहीं लिखे लिख के भेजा इसलिए मैं अभी बजाने वाला है आप लोगों के लिए वो दबंग फिल्म से चोरी किया रे जिया सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में तो सुन के मजा लीजिए थैंक यू सो मच शुक्रिया फॉर योर मैसेज एंड यस लिसनर्स का नीचे होने वो अपने लोग के सोनू निगम और श्रेया घोषाल का वास्ते फिल्म से दबंग

वेल प्रोग्राम दिया को दूसरा गीत होनी बा और एक गीत करने लिखी ना पता से बुगा जान परा सुनीता बसमतरी सनम रे फिल्म परा इतु टाइटल सॉन्ग तो बजाई दी बिगुआ से आलो टाइ तो गाना डेडिकेट करी दिया से तला का साथी खान माने खान होल मंदिरा दी अंजिल अंजलि अंजलि हंड्रिका देवाशीष अमोल बसुमतरी भाईकोन रकोविले अकुजो धनंजय फागुरंग कसीम अली कुलमणि बोरा दुर्गेश एंड ऑल एफएम फ्रेंड्स को ये लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच सुनीता लिखी ना पठा दिया कारण तो लिस्नर्स का नीति शुनब आपे अरिजीत सिंह और एडिशनल वोकल्स दिया अनिरुद्ध भोला

0: Hello.
1: Hello, good evening, RGV.
0: Good evening. Yes, kon kwa se?
1: It's me again, Givi Leko Meta.
0: Oh, Givi Leko, I'm so glad. Kini ka se?
1: Bala se, apni kina se?
0: Movie over solid, chagas.
1: I'm very good. Manohan James Khan Chilwe niya kiki addiction thagi ali moida FM track upon la lover hoye jibo do
0: sasi sasi awni ido samui la sore man FM la sore thagile da ta price to dio daisle
1: aiya
0: holi aji man la FM la side pa awni ge salute kudies de moina
1: aiya thank you aro kwam sla apni khan RJ khan thaka ba moi aro bishi interesting ase
0: aro moi khan bi awni national listener saina man josh ba call kora listener an thake kane man bi man khushi thake da na
1: ai ba kon sna aro apni khan do lido every day man ge entertain ko bole kane moi dekhi misa go moi do morning to evening do moi la time do full fm talk ban do
0: pen go do to ne man man khushi pai do
1: ai aro moi update to din thake like kina ho ki ase sob do
0: jage na sab jane na tin na चला ठीक है आज कौन गाना होने
1: मैं आज तो एक मन के आहल आए मन के छाला गाना एक
0: फेवरेट गाना ना
1: अपने गान आरजेस खान सब के मैं एक मला मन रो हार्ट ब्लेस को ना मैं डेडिकेट को डोले मन से स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बाय ब्रेन एडम्स
0: आई तो गाना तो मैं ऊपर खुशी पाए तो मैं लगाना जानिए ना कोई दिशा
1: अपने अन्य अपने अन आजेल कांजी मोहन खुशी पाला गाने बजाए जाएंगे
0: तारो तू जी इतने आज इतने
1: आज इतने दिन यंदो लोगो मैं खुशी पाला गाना खाने बजाए क्यों शको ओए
0: आई मान अलग कनेक्शन है ना गीता
1: तो हो पाने दे तू क्या रो
0: तू क्या रो तू क्या रो
1: अरे कौन एक तो क्यों हो दो एक दो माइंड जे किनी स्टूडियो दे वापस आई वो ना
0: आई वो एंडिंग फले आई वो ताई ना
1: ओके आई एम सो हैप्पी
0: या लास्ट
1: फले आई वो तभी मिला सेवेट अजेक्ट आसे अपन दिन आसे मिला सेवेट अजेक्ट आया
0: थैंक यू सो मच
1: मुझे मिला हेड पर वो बाय जे किनी के रिक्वेस्ट दी दी
0: आई श्योर श्योर आज किनी के एक बार आई ना उन्हीं के लक पावी को दे मुझे
1: आरो कोनिसना आपने आपना लिसनर्स एकटा किबि लखो मेथा हो आपने के रिक्वेस्ट दिया से कोइना मोरन बाय तुमला मेसेज तो के पठाई दी आरो तो गाना दो itu gana bro special ya ni kan RJ kini ini dedicate kurwo aru apni kan RJ bawa moy nishna suku mati kha manu ekta holi bi apni kan no de nya FM track ban join gona ini ga aj tok mera life te tu du kahle bi moy ekdom itu hunile moy ekdom khushi thage to bro apni kan RJ khan sob ke mala sat pa god bless you ta
0: wa I thank you so much give me lekho sabi ini ase awuni suku bi ase ko na mundu pi na kruwi suku bal thage han do na itwa bi suku bal thage li bi bal kam na kruya manu bi pishe as do hole awuni do suku ina thage li bi awuni la sabi do the way you talk awuni manu ge ek bar kotha kura dam re bi mohan ge man khushi kurde ekku duk na thake an jina mohan ge man te mohan ge bi man encourage kuri dia awuni la kotha ra na itwa awuni iniga hi thage bi aro you have a very big blessing on you okay awuni kotha kura ba bi manu ge bishi taniwa pare गाने मन दुख ना कोई और थैंक यू सो मच इतना सुंदर गाना मांगे डेडिकेट करी
1: है माने वाह अब कौन निशना इतो अपने खान आज खान दो मैं हार्ट टेस्ट है तो गाने इतो गाने मैं चूज कर सी
0: ओके ओके और उन्हीं भी माना हार्ट टेस्ट दे इतना मान रेडी देख दा मैं एक ता हक पता है दे मैं आउनी के
1: अब कौन निशना एक दिन तो मोहन भी लोग पैसे तो लेके मैं भी खुशी ना
0: हो सासे तो पाओ तो मैं आज के निगे को वी विल प्लान आउट समथिंग ओके
1: Okay, thank you.
0: All right, thank you so much, Givi Leko. You have a beautiful evening day.
1: Okay, thank you. You too.
0: Yes, thank you.
1: Okay, good night.
0: Good night. Well, my dear listeners, that was our very, very regular listener, Givi Leko Mehta, and he wants to dedicate it to straight from the heart, brain, adams la gana, sop mani ke dedicate kudiasle, itu karne itya jayina, mihan itu gana huni lo hao.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर

0: और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Dragoban
4: 103 MHz.
3: News, music and entertainment.
4: This is FM Dragoban.
3: FM 103 MHz.
5: Good evening listeners, it is Akashvani Kohima. FM Dragoban 103 MHz pra itia program hunibo apnaloke Hindi film gan program Purani Geet. So RJ Jacob apni an sab ke welcome kuri ase, swagat kuri ase, namaste aru salam koi na janai di ase. Apni ka laga feedback, suggestions, nole thoughts thake se kule to number de likhibo pare 9436805333. Aru likhibo gane code ase FM space F. Well pela geet hunibo apnaloke Udit Narayan aru Alka Yagnik laka waste film ase Fiza.